सुन मन मेरे भज सतगुर सरणा गुर प्रसादी छुटिया बिख भव जल शब्द गुर तरणा रहाओ त्रै गुण सभा ताता दूजा भाव विकार पंडित पड़े बंधन मोह बांधा न बूझै बिखिया प्यार सतगुरु मिलिया त्रिकुटी छुटै चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइए चूकै मूं गुबार शब्द मरे ता उदरै पाए मुख द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम अहंकार तार एओ मनवा अत सबलै छड़े न कितै उपाय दूजे पाए दुख लाए दा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे से उबरे होम शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुर पाई नाम दे दृढ़ाए बिन गुर के न पायो।

हमें विच जाग बिन सदा मरदम मैं आवै जाए मन मुख सवदय न जानै जा सुन पथ गवाए गुरु सेवा नाओ पाई है।

0: गावन तनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख तन बिचारे
1: गावन तनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन से रहे सदा सवारे
0: गावन तनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत आदर नाले
1: गावन तनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तनो साध विचारे
0: गावन तनो जति सती संतोखी गावन तनो वीर करारे
1: गावत ब्रह्म पंडण की सर जो जो वेदा नाले
0: गावत तन्नो मोनिया मनमोहन सरगम सरगम प्याले
1: गावत तन्नो रत्नो पाए तेरे आसन तीर्थ नाले
0: गावत तन्नो जोत महाबसुरा गावत तन्नो

0: तारे भगत है, तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनेक अनेक अनंता।
1: तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे निरंतर।
0: तेरे अनेक पढ़े पहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करता।
1: से भक्त भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता।
0: आज पुरख अपरंपर करता जी।

0: जबयो बाच बेंती चौपी हमरी करो हाते रक्षा
1: पूरण होए चित की इच्छा
0: सब चरणन मन रहे हमारा
1: अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमरे दुष्ट सबे तुम कावो

0: नानक सच्चे सार क्या नहीं करते रे।
1: सचा नाम मेरा आधार,
0: साच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया,
1: कसा सुख मनाए वसे, जिन इच्छा सब पुजाइया,
2: सदा करुणा के भाग्य विठोर।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सुवासां संग निभाया तिन्हां

हर एक राग का एक मुख अंग होंदा तो उस मुख अंग तो उस राग की पहचान होंदी है। जिवें हर एक आदमी का एक चेहरा होंदा मुख होंदा है ना, मुख मैंने चेहरा, तो इस तरह राग दे भी चेहरे होंदे ने। अगर वो चेहरा बदल जाए तो राग बदल जाता है। कहिंदे नहीं ये उहदा भरा आ, ये हंस धोनी नहीं, ये शंकरा है। तो मुख अंग दे नाल ही राग की पहचान होंदी। इहदा मुख अंग चाहे कोई कर्नाटक च गावे ते चाहे कोई हिंदुस्तानी पद्धति च गावे, इहदा

पकड़ना है। अंचल गह के साध का तरना ए संसार पार ब्रह्म आराधी है उधरे सब परवार। तो जिन्हें उदा पल्ला फड़ लिया क्योंकि सारा जग कूड़ है उस्तत निंदा नानक जी। मैं हब वंजाई छोड़े हब किश त्यागी हबे साग कूड़ावे डिठे ये वेख के संसार च सारे रिश्ते नाते सब कूड़ ने ते हुण पौ पल्ला टेंडे लगी हो आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से ते जड़ा लग जाता वो मां भी धनता दे योग है जिसने उस पुत्र नूं जन्म दिता है जो परमात्मा दे चरणा विच सदा सदा लई उहदे नाम दे विच रंगिया गया है।

गै मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर धन जन को आप रव दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवरना जानी, ओत पोध जन हर सराते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत।

ब्रह्मज्ञानिकमन परमानंद ब्रह्मज्ञानिक कार सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का हो आचेत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जैसे करे प्रभाप ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बट भागी बाह्य ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाह्य ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाय अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाना ब्रह्मज्ञानी की गाते ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण

दास तिस्का नाम सत राम दास आत्म राम दस नदरी आया दास दसंदन भाया दन भाया सदा निकट निकट रजान सूदास दरगे परमान अपने दास को आप कृपा करे इस दास को सब सोजी पर सकल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै

समाए। आप उदेश समझे आप आपे रजिया सबके साथ आप किनु आपन विस्तार सब का शुष्काव करने हार उसे भिन्न कहो किशोय थान धनंतर एका सोए अपने चलताप करने हार कौतु कर रंग आपार मन में आपन अपने माहे नानक कीमत कह ना जाए सात सात सत प्रभु स्वामी गुरु।

हार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी संत गए दुखन आर जा घटे संत गए दुखन जमते नहीं छुटे संत गए दुखन सुख सब जाए संत गए दुखन नरक में पाए संत गए दुखन मत हुए बलीन संत गए दुखन सो बाते हीन संत गए हते को रखे ना कोई संत गए दुखन थान भ्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जे करा नानक संत संग निंदक भी तर संत गए दुखन दे मुख पवे संतन गए दुखन काग जो लवे संतन गए दुखन सर्प जोन पाए संत गए दुखन त्रिगत जोन खिरमाए संतन गए दुखन तृष्णा में जले संत गए दुखन सब गोशल है संत गए दुखन ते सब जाए संत गए दुखन नीच निचाए संतो की गाथाओं को नाहे नानक संत पावे तो वही विगत पाहे संत गए निंदक महतताई संत गए निंदक घंट कन्न पाई संतगा निंदक मात्यारा संतगा निंदक परमेश्वर मारा संतगा निंदक राजते हीन संतगा निंदक दुखिया अर्धीन संतगा निंदक सर्व रोग संतगा निंदक सदा विजोग संतगे निंदा दुख में दुख नानक संत भाविता उसका भी हुए मोख संतगा दुखी सदा अपवित संतगा दुखी किसे का नहीं मित संतगे दुखी को डान लागे संतगे दुखी को सब त्याग संतगा दुखी मां अहंकारी संतगा दुखी सदा बेकारी संतगा दुखी जन्म मरे संतगे दुख ना सुख ते टराए संत गए दुखी को नाही ठाव नानक संत भावे तलाए मिलाए संत गए दुखी हथ बीच से टूटा है संत गए दुखी किते काज न बहुचाए संत गए दुखी को ध्यान परमाइए संत गए दुखी उजड़ पाइए संत गए दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत गए दुखी की जड़ किशनाहे आपन भी जापे ही खाहे संत गए दुखी कबर न राखन हार नानक संत भावे तलाए उबार संत गए दुखी इं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत गए दुखी भुखा नहीं राजे जो पावक इंद्र नहीं थ्रापै संत गए दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला संत गए दुखी धर्म ते रह संत गए दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तनंद गा तुरे भया नानक जोत सुभावे सोई थिया संत गए दुखी बिगड़ू पे जाए संत गए दुखी को दरगाह मिले सजाए संत गए दुखी सदा सहकाइया संत गए दुखी न मरे ना जीवाइय संत गए दुखी की पूज ना आसा संत गए दुखी उठ चले निराशा संत गए दुख न त्रष्टा कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पया गर्तना मेठा कोई नानक जन सच्चा सोए सब गढ़ तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से त्यावो सास खिरास सब कुछ बरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खे लाभ करने हार दूसर का उनका है विचार जिसनों कृपा करत सापा नाम देव भागी नानक जन से सलोक

अपेसाचनानुभ सीपे ऐसा अष्टपदी चरण सात सत प्रसन्हार पूजा सत सा सेवदार दर्शन सात सत पेखनहार नाम सात सत अवनहार आप सत सा सबधारी अपे गुण अपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत साजा सुनता बुजनहार गो सा सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सा सुरूप हृदय जन मान्या करण कराम दिन मूल बछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पैते निरपोए बसाना स्तिप जात समाए समाना वस्त माए जे वस्त माहे ने वस्त

सो सेवक गुरु की मतले बीस बिस्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की कथ जाने सो सतगुरु चिरदे हर डावन कबार गुरु को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्म एक आपने कश ब्रह्म सह सियान बलया ना जाइये नानक ऐसा गुरु बट भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण कथ निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करण आगाने मन संतो खातम पतियाने पूरा गुरु रखे जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिसलाए मिलाए जे बाय कुस्तत नेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम अगोचर प्राप निर्बानी निराहार निर्वैर सुविधाई ताकी कीमत गिन न पाई अनक भगत बंदन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सतबल हारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सो होए उस प्रकार ना ही कदे बिना जागे मन प्रगटे गुंता साठ पैर हर का नाम रे सजब दे सेवक को दे मो माया के संग ना ले मन में राखे हर हरे अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख दाते नासे तब तमाय ठांड बरताई अनंत पै दुख नाठे भाई जन मन के मिटे देसे साधु के पूर्ण देसे पहु चुका निर्भय बसे सकल व्याध बनते कह नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सासंग जप नाम मुरारी तित भाई चुके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जस श्रवण

के प्राण आधार। जो जो जपे सोए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्वकुंठ मुक्त मोह पाए, एक नम खरके गुण गाए, अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती, हर हर नीत भली सुकरणी, शोभा तनमन हृदय बसे पूर्ण गुरमंत्र।

पश्चपदी जब कार्य काशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जब तब हर सौ कहो किसे व्याप जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह गांग शोभ ब्रह्म अपन के लावर तीजा दान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभा तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आप ही आप अपनी जो तर तब कमन ने डर कमन का तो डरे अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस हो जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस भूषित लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बैन मैल कहा हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश जगदीश तय छल छिद्रस लगत कहो कीस जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण ग्रामन करने हार नान कर देगा राय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्व कलापे परवीन तय भेद देव कहा कौचीन जब अपने आप उतार तो शगन अब शगन का विचार जय अपन उचापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मराय बिस्माद नान अपनी गत जानो आप जा शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे व्यापत माया बसगु अपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश एक है एक एक

और अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार अपेका विस्तार जात सुभाविता सठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न ही किशो अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो सम दर्शी तद का बेता नानक सकल सृष्ट का जेता जी अजंतर सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुझ कोई ना मारे सो मुआज मनोह बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय

स्वंदर सो बाहर आनंद घटगढ़ ब्या भ्रया भगवंत तरणमय आकाश वयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर बधाय पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पावन बाणी वह संतर माए चार गुण दिशे समाये दिशे भिन्न ही कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत में देख ससी और सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोलना गबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोलना पहिये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत आर्यो स्वामी ओत बोध गुरप्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन में विश्वास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुन है सुबचन सर्व्यापी राम संगरचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत भजन साधु सब कहत जो जो ये सुख माने करन करावन हार पर जाना है अंतर बसे बाहर भी वही नानक दर्शन देख साब वही आप सत किया सब सात तिस प्रभ ते सगल उत्पाद तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार अनकला लखी ना जाए जिस भावित सिलाए मिलाए कामन निकट कामन कहिए दूरा पिया बा भरपूर अंतर्गत साब जनाए नानत जना बुझाए सरभूता पर तारा सर्वनैन सर्वनैन आपेखण हारा सगल समग्री जागा तना पंज साप ही सुना बजाने खेल बनाया गया कारी कीनी माया सबके बाद अलिप तो रहा है जो किस कहना सो आपे कहे आ गया आवे आ गया जाए नानक जा भाव है तरह समाए इससे हो सो ना ही बुरा और आय कहो किना कुछ करा आप भला कर तू तत् नेकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बोत आपन संगराज ताकि गतमिंद कहीं ना जाए दूसरो सोची पाए तिसका किया सब प्रमाण

वर्षपदे पूरे गुरुका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरा चिंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंदी गरहो सासंग अगन सागर तरहो हर तन के परलेहो पंड

गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले।

सदैव प्रसाद। नमो नर्क नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे।

0: वाला पहला सच तेरी खंड सच ब्रह्मांड सच तेरी लो सच आकार सच तेरे कर्मी सर विचार सच्चा तेरा मैं सच्चा दीवान सच्चा तेरा हूँ सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच है तू दाखिला करोड़ सच है सरतान सच है सब जोर सच्ची तेरी सब सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याइन सच जो मर जमे सो कचन का चमहला पहला
1: वडी वडी जो वडा नाओ वडी वडी जो सच ने आओ वडी वडी जने चुथाओ वडी वडी जाने आलाओ

0: पौसुक साकुल पतालिय काशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण के देवा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पैदन कुदरत सर्व्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभमान
1: कुदरत पौन पानी पैसन त्रिकुद

0: पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियन कर प्रगटा सुनाया,
1: वाहिगुरु।
0: सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया।

कृपा करे ता साई का करायसी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकुम मनायसी हुकुम मनया होवे प्रमाणता कसमे काम महल पायसी कसमे भावे सो करे मन चंदिया सो फल पायसी धादर के फायदा जायसी ता धर

किछ करना सो कर रहया महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं।

हाथी आवन जाना तुम ही किया। जिस तू राखै तिस दुख न थिया। तू एको साहेब अवर ना होर बिनो करे नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवा तू जानाए ता कोई जाने तेरा दिया नाम वखाणै। तू आचरज कुदरत तेरी विस्मारा तुद आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मन तन आधारी नानक दास बखसीस तुम्हारी। वडहंस महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हौ क्यों पाई गुरपुरे। जेसो खेल खेलाई है बालक रह ना सकै बिन निखीरे। मेरे अंतर भुख ना उतरे आ माली जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम प्रेम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलो मित्र।

का ज्यो चातृक जल को बिल लाता हूं क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ भई ओडीनी कंत को आमाली सो पिर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसर बिना पिर किते ना लेखा यो कापड़ तन ना सुखा वई कर ना सको हौ वेसा जिनी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिंगार बनाया माली फिर बिन काम न आए जा सह बात न पुछी आया माली ता बिरथा जोबन सब जाए थन थन ते सुहागनी ओ माली जिना सो रहा समाए हम वारिया तिन सुहागनी ओ माली तिन के धोआ सद पाए जिचर दूजा भरम साया माली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु आ माली ता आसा मनसा सब पूरे मैं सर्ब सुखा सुख पाया आ माली फिर सर्ब रहा भर पूरे जन नानक हर रंग मानिया माली गुर सतगुर कै लग पैरे बढ़ंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सची बाणी सच धुन सच शब्द विचार अण दिन सच सलाहना धन धन वडभाग हमार मन मेरे साचे नाम विटो बल जाओ दासन दासा हो रह ता पावे सच्चा नाउर जीवा सची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सालाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अण दिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच

हर निर्मल सदा सुख दाता, मन चिंदिया फल पाऊ। हम नीच से उत्तम पए हर की सरनाई, पाथर डुबदा काढ़ लिया साची वड्याई।

गावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारी कीर्त करे स्वामी तेरे दुआरी। जपे त साचा एक मुरारी साचा मुरारे ताम जापे। जाम मन वसावे परमो पुलावा तुझे किया जाम हो चुकावे। गुर

तेरे बंके लोइन दंत रिसाला सोहने नक जिनन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की ढाला सुवन ढाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बगा लहे मन की जाला बंके लोयना दंत रिसाला तेरी चाल सुहावी मुदुराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जुआणी तरला जुआणी आप पानी इच्छ मन की पूरी है सारंग ज्यों पग तरै ठिमा ठिम आप आप संधूर श्री रंग राती फिरे माती उद गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मुदुराड़ी बाणी पड़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सचे शब्द मिल रही मुइये पिर रावे पाए प्यारे सचे पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो ने हो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर का शब्द समाया सा तन

से आखिए होर कहर करना किछु न जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम न फुसी कोई। जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई। गुर प्रसादी आप गवाई नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखिए होर करना।

जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया सबदे काड पिए पनहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हों मैं मैल परी जय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कू कदे।

के कोई, जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै, तिस जे वड अवर ना कोई। मनमुख अंदा तप तप खपै, बिन शब्द सहांत न आई। नानक बिन नामे सब कोई भुला, माया मोख आई। इहो जग जलता देख कै, पज पै हर सरनाई। राम अरदास करी गुरपूरे आगे, रख लेवो देहो वडाई। राम रख लेवो सरनाई, हर नाम वडाई। तुद जेवड़ अवर न दाता, सेवा लागे सेवड भागे, जुग जुग एको जाता। जात सत संजम कर्म कमावे, बिन गुरगत नहीं पाई। नानक जिसनु शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे साई उपजाए,

जाप हर हर नाम विगसे राम, जाप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमन निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे मेरा।

तेरा प्राण सखाई, तेस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख अमृत पीवा।

जग माहे सब जग काजल कोठी तन मन दे सुआए गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिए सच नाम सिर साहा पात साहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वे साहो मनमुख भोजन पच मुए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की तोख मुकाम ता पर जानिए जर रहे निचल लोक दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बंद हो लाग रहो नाम में रहाओ जोगी ता आसन कर बहे मुला बहे मुकाम पंडित वखाणे पोथियां सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलनहार सुल्तान खान बखाड़िए बिल्ला तबूजे कोई नानक बखाणे बेनती जल थल मही अलसोए अल्लाह अला का गम कादर करनहार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनो आखिए जिस सिस न होवी लेख असमान धरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रब चले निस सस चले तार का लख पलोए मुकाम ओही एक है नानक सच बगोए महले पहले सतारा अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन गुर भगत न होए आपे आप मिलाए बुझे तां निर्मल होवे कोय हर जियो सच्चा सच्ची

चरण कमल चित लाए, जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारा जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारा जी ओ मित्रा बिख सागर संसारे, चरण कमल कर बोयत करते सहसा दुख ना व्यापै, गुर पूरा पेटै बड़पागी आठ पैर प्रभ जापै, आदि जुगादि सेवक स्वामी भगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे, मन प्यारा जियो मित्र

मरन ना आवन जाना संसार दुख मिटाया। चित्र गुप्त का कागद पारिया जम दूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लते के पसवली। मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो। सिमर सो आमी सुख है गामी इच सगली पुनिया पूर्वे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी बिछुनिया। अंतर बार सरबत सरविया मन पजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना। हर पिया गाने अमृत बाने सर्ब सुखा मन बटे श्री तार पाए मंगल गाए इच्छ पुनी सत गुर तुठे। लाडली ने लाए नौ नित पाए नौ सर्ब सटाकर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राके शांत मला पंजवां ओंकार सतगुर प्रसाद रखना हठ मजाओ मा पिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभने नानक प्राण आधार। संत चरण कमल सिउ प्रीत रीत संतन मन आवे जियो दुतिया भाव विपरीत अनी

जिसनो आप कराए सोए, सतगुर विच नाम निधान है करम प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द स्यो तिन सची सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोए। महला तीजा सो भगौती जो भगवंत है जाने, गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै एकत कर आणै।

से हुन ताराओ तुम जो नायक आचो अंतरजामी प्रभ ते जन जानी जय जनते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहो रविदास सम दल समझावै को राग माज चौप दे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद हर हर नाम में हर मन पाया वड भागी हर नाम ते

चौथा मधुसूदन मेरे पन तन प्राणा हौ हर बिंदु जायवर न जाना कोई सज्जन संत मिले बड़भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हौ मन तन खो जी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई मेच संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा।

खुदमुख पाई। हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा। हर जन संत मिलो मेरे पाई, मेरा हर प्रभ दस्यो मैं भुख लगाई। मेरी सरदा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी। हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत।

सेव करी पल चसन बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली ज्यो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद संभाली सो कम सहेला जो तेरी काली सो रिदा सहेला जित रिदै तू उठा।

परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको आचरज काओ ज्यों जल जल मैं फैसना निकसे त्यों त्यों ढोर मिल्यो जो लाओ। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जाओ तन कांसी तजे कबीरा रमैया कह नहोरा राव। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय हर जो होई। इंद्र लोक शिव लोक जैबो होश तप कर बहर ऐबो क्या मांगो किछ थिर नाही। राम नाम रख मन माई राव सोभा राज वे बड़े आई अंत न काहू संग सुहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कवने सुख पाया। कहत कबीर अवरणी कामा मरे मन धन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम बे सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई। राव बनता सुत देह ग्रह संपद सुखदाई इन मैं कछ नाहे तेरो काल अवध्याई। अजामल गज गणका पतत कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने। कुकर सुकर जून पर मैं तव लाज ने आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। तज भरम कर्म बिद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एको ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। उपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधकाई जिन त्रैण तू धर मूड बुलाए। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करता हों बिन सजाए झूठी देही राव। मेरी मेरी कैरों करते दर जोधन से भाई बारह जोधन छत्र चले था देही। गिरजन खाई सर्ब सुने की लंका होती रावण से अधकाई। कहाँ पे उधर बांधे हाथी गिन में पही पुराई। दरबासा सो करत ठगौरी जाद वे फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। दास बैरागण मोहे बस कीनी पंचो का मिट नाव सत्र दय पर अमृत सार बिख को मार कढ़ावो।

कामया रहा न्योतरणी को इंद्र बाला कुसुम बास जैसे पवरला ज्यों को कल को अम्ब बाला त्यों मेरी मन रामैया चकवी को जैसे सूर बाला मान सरोवर हंसला ज्यों तरणी को अंत कंत बाला त्यों मेरे मन रामैया बार को जैसे खीर बाला चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बाला त्यों मेरे मन रामैया साधक सेदा सगल मुन चाहे बिरले काहू बीठला सगल पमन तेरो नाम वाला त्यो नामे मन बीठला पहल पुरिये पुनरक मन्नाता चे अंसा सगले जन्ना कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचन्ना पहल पुरसदा अथोन अथोन पुरसदम रास गास सुगार का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा रा नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तुनक नाचा

सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला भारे उठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्यार पो नाम तेरा तु ही चवर टोलारे दस अठाए अठ सठे चारे खाणी है वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचना एको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गावारी दो किरत सो किरत थारो करमरी रा संकत संकरा मस्तक बस्त्रा सुर श्री स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंका मठी सरी विश्वास का दीप स्वामी तांचे रे सुवारथी पंखी राय गरुड़ तांचे बादवा कर्म कारण पिंगलारी अनक बाद कर तात्र पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ परम ताल है ना पार दी कर्म कर कपा कपाल मठी सरी अमरदास ससी अंतिम लक्ष्मी कलतर शिखर सुना।

अनंक हर कृपा धार दीजे मति उत्तम कर लीजे मुग्ध सयाना मेरा मन आलसिया गुलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपटो खुलाना।

कृपा कर्मा दो हर हर नाम उमा हराम जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जगलाहा धन धन बड़े ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक।

0: सखी मिलहो मिल गुण गावहा गुरमुख
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज छेती मन वजियां वधाइयां गाव रतन परिवार परी

सुंदर माया त्रो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोगा जागत पखलाया।

सगल जान सुन प्रताप गोविंदा निरपव भय मान तूटने आवे मूल संचिया नाम धन संत जना स्यों संग पाइए वड्डे पुन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सोना सलोक दया करणंग दुख हरणंग उचरणंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान ने नानक लिपत ना माया भय बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्य पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ भय दयाल न व्यापे माया कोट अगा गएगा नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कटंब संग लोग कुल सुभाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल।

आमन जाना हुकम सब ने चल तुद थेओ नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो। जय श्री बाणी भगतां की एको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ कछु न जानो मन माया के हाथ बिकानो राव तुम कहिय तो जगत गुर स्वामी हम कहियत कल युग के कामी। हिन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो जद देखो तद दुख की राशि अजो ना पति आय निगम पै साखी। गौतम नार मापत स्वामी सी धरण साहस भग गामी इन दूतन खल बद कर मारियो बडो नलाज अजू नहीं हारियो। कह रविदास कहा कैसे कीजे बिन रघुनाथ शरण तां कहा की लीजे। को ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर।

तिन प्रभ आप भुलाए उरा। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोत नायो मन लायो। बिगस्यो पीख रंग कसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों भाओ न कीनो, नै सतपुरख।

मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी राम। अवरण सूजे दूजी ठार आर परे तो दुआरी, लेखा छोड़िया लेखा छूटे अम निर्गुण लेओ उबारी।

अनक छिद्र बोहत ते छुटकत थाम न जाही करे जिसका बोहत तिस अरादे खोटे सांग करे गली सैली उठावत चाहे वे उहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कवर।

कछ ना बिचारियो। प्रेम गयो मैं हर रंग पीना, पेखियो लालन पाठ बीज खोए आनंद, चिता हरखे पतीना, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

ते अपने भगत को पूर्ण दान राग खूब परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कूट राज नाम धन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रभ मान आठ पैर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सुमरथ कान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुरबान टोडी महला पंजवा

रांडी को ब्राह्मण के कर रांडी आछा रांडी सांडी हांडी को बाणिए के कर ही ग्यास है भैंस माथे सिंगो देवल मदे सिंग आछा लीग सिंग हिंग को तेली

जंगल मदे भेल को माली के कर तेल आछ केल बेल तेल को शांता मदे गोविंद आछ है।

तन कमलिए बहार क्या ढूंढ है, वह किया दे सलाहियां, नैनी भाव का करे सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जा सो तरे प्यारो, यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे, करण पला करे बहु तेरी सा तन महल न पावे, वर्ण कर्म कछ पाइये नाही जे बहु तेरा तहवै, लभ लोभ हंकार की माती माया मैं समाणी, इनी बिरती सो पाइये नाही पाई कावण यानी, जाए पुछो सुहागणी वह इनी बातें सो पाइये, जो कुछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, जहां के प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लाइये, सो कहे सो की जय तन मनु न दी जय, ऐसा परमल लाइये, एव कहे सुहागणी पहने इनी बातें सो पाइये, आप गुआइये ता सो पाइये, अवर कैसी चितराई, सो नजर कर वेख सो धन लेख कावण नाउनिध पाई, अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सब राई, ऐसे रंग राती सहज के माती ऐनस पहे समाणी, सुंदर साए स्वरूप बचखण कहिए सा सियाणी, तलंग महला पहला जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तै सड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलो ताया जोरी मंगे दान वे लालो, सर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फेरे प्रधान वे लालो, काजिया ब्राह्मणा की गल थकी आगत फड़े चैतान वे लालो, मुसलमानिया पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो, जासतानी होर हिदवानी ए भी लेखे लाए वे लालो, खून के सोले गाविये नानक रात का कंगू पाए वे लालो, साहेब कै गुण नानक गावे मासपुरी विच आख समूला, जिने पाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला, साचा सो साहेब सच तपावस सचड़ा न्याओ करे समूला, काया कपड़ कुट कुट हो सी हिंदुस्तान सबाल सी बोला, आवन अठतरे जान सतन में होर भी उठ सी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला, तलांग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब आए हुक्म खसम हो हुक्म सब पहा वर्तनी, सोह सच साहेब सच्चा बेल सब हरतनी, सलाहे सच सब ऊपर हरतनी, जिस नाही कोई शरीक जिस लेखे हो गणी रहो, पवन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी, विच वर्त नानक आप झूठ कहो क्या गणी, तलंग महला चौथा, नित नैफल कर्म कमाए बरफावे दुरमतिया, जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया, ऐसा बाजी संसार ना चेते हर नामा, खिन में बैसे सब झूठ मेरे मन त्याए रामा राव, सावे लाजत ना वैजत आए कटांक काल ग्रस है, तस नानक लय छुड़ाए जिस कृपा करे हृदय बसे, तलंग महला पंजवा घर पहलाए क्योंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर कर दंग आलम दुनिया है, असमां जमी दरख्त आपदायस खुदाए, बंदे चासम दीन बनाए दुनिया मुर्दार खुर्दनी, काफल हवाए राम गैबान हैवान राम कुस्तनी, बुरदार बुखाए दिल कब्ज कब्जा का दरो दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिलखनाए, जब अजरा हील बतनी तब चेह करे विदाए, हला मलूम करदम पाकल है बखो नानक अरदास पे दरवेश बंधाए, तलंग तलंग घर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सो होए, तेरा जोड़ तेरी मन टेक
सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म तार तेरी टेक तेरा आधार हाओ है तू है तू हो बनहार आगम गाद ऊच अपार जो तद सेवै तिन पहो दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिस सु तेरा रूप गुण दान गोविंद नूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस को बलिहार तिसके संग तरे संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बाछो धूर तलंग महला पंजवा घर दूजा मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान जी सगल को देवै दान रहाऊ तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जिन पदास तू किया से दे आधार जिन पाए मेदनी सोई करदा सार कट कट मालक दिलांका सच्चा परवरदिगार कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जी चिर कट मैं साहो तू समरथ अगात तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिण तेरी रास रहाम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तलंग महला पंजवा घर तीजा करते

0: कौन जाने चलत तेरे अंधेरे में दीप, खुदाए खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए। दिन सरैन जो तुझे अरादा सो क्यों दोजक जाए, अजला अजरा हील जार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सफल आपू तेरे जन वेखन दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगला सत सुख तेरा नाव, गुरमिल नानक पूजिया सदा एक से गाओ तलंग महला पंजमा। मीरा दाना दिल सोच महबते मन तन वसे सच साहेब बंदी मोज राओ। दीद ने दीदार साहेब कशु नाही इसका मोल, पाक परवरदिगार तू खुदाए कसम बढ़ाया तोल। दस्तगिरी दे दलावर तू ही एक, करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तलंग महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन किया तिन वेखिया क्या कहिए रे भाई, आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई। राय सा प्राय का
1: हाथ पछोड़ सिर तुण जबरण बिहानी, पछोताब ना मिले जब चुकाएगी सारी, ता फिर सारा रावी जब आवेगी वारी। कंत लिया सुहागणी मैं ते वधवी हो, से गुण मुझे ना आवनी क्या जी दोस तरे हो। जिन्ने सखी सौ राव्या तिन पूछोगी जाए, पायल गो बेनती करो लेओगी पंथ बताए। हुक्म पछाणे नानिका पौचन दिन लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहया, मिलिया कहिए रे सोई। जो जे बो तेरा लोचिए बाती मिल न होई, तात मिले फिन ताज को लिव लिवे को तावे। गुर प्रसादी जानिए तो अन्न पौ पावे, पाना वाड़ी होए कार खर सार न जाने। रसिया होवे मुसका तब फूल बछाने, अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे। सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे, तिलंग महला चौथार क्या कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया, आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर के गुण हर पाम दे से गुरु से पाए, जिन गुर का पाणा मनिया।

एक मिनट एक एक खास तौर पर उत्ते बेनती है कि जो शब्द खत्म होंगे नाल दी नाल ही दूसरा जिहड़ा जत्था वा वह प्लीज़ तैयार रहे। तो हुण असी शबाज सिंह हुणा कोलो ते जसमन सिंह हुणी तबले उपर जौतो प्रेम खेलन कचाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद एकमप्रीत सिंह, हरनूर सिंह, जुगाज सिंह, प्रभनूर सिंह होना दा। सो हुण अखीरला जिहड़ा शब्द रंगना इस मन को हरी के भाई हरनूर सिंह होड़ी ते इहदे तो बाद ही सोदर दा पाठ भी ओह करनगे ते इस तो बाद फिर रहरा साहब दा जिहड़ा पाठ होएगा ते रहरा साहब दे पाठ तो बाद जिहड़े साडे वॉलंटियरस आ स्टूडेंट्स वलंटीयर किड्स वलंटीयर ते पेरेंट्स वलंटीयर उन्हां दे लई सम्मान दे लई थोड़ा समा होएगा। सो जिहड़ा रहरा साहब दा पाठ आ ओह भी इस स्टेज दे उत्ते ही बैठ के होएगा। सो सुणदे आ हुण तो जिहड़ा अखीरला शब्द आ ते इस तो बाद सोदर चौंकी दा जिहड़ा कीर्तन होएगा ते पाठ जिहड़ा रहरा साहब दा उत्थे होएगा। सो आओ सुणदे आ हरनूर सिंह हुणां दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, नाल ही मेरी एक बेनती है कि जिहड़े बच्चे ने रहरा साहब दा पाठ करना ओह स्टेज दे उत्ते हुणी विराजमान हो जाण क्योंकि सोदर दी चौंकी दा जिहड़ा कीर्तन होएगा उस तों बाद ही आपां रहरा साहब दा जिहड़ा पाठ आ ओह शुरू कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: मेरे माधो जी सा संगत मिले सो तरिया
1: गुर प्रसाद परम पर पाया सुखे काश हरिया राव
0: जनन पिता लोक संपन्नता कोई ना किसकी तरिया
1: सिर से रजक समाय उठा कर काहे मन पाव करिया
0: उड़े उड़ावे सह को सात इस पाछे पचड़े शरिया
1: तिन कवन खलावे कवन चिगावे मन में सिमरन करिया
0: सामने दान दस अष्ट सिद्धांत ठाकुर कल तर तरिया
1: जन नानक बलो सदगो जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया
0: रागा समला चौथा सो पुरख को कर सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगम

0: तेरे पवित स्नेह तुझी हर अनेक अनेक अनंता
1: तेरी अनेक तेरी अनेक हर पूजा जी तपता पै जपे व्यंता
0: तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खाट कर अनुक्रांत।